दूसरा गाना हिंदी गाना है, सो फिल्म का नाम मैनू याद नहीं है कौन सी फिल्म है। ये भी दो गाना है, बहुत मकबूल होया और सुनने के